0: हाई वा मुकेश सेरे कानो पने खो वारा में तुम ही किले ली हो वानी आनो वारे ली वा वो ए रो हुआ ए ना रो मा असोरे का ओवान को खला तो ना मुसी अना ये तो को पंसेरिया तेरे तो माँ पन्या या वो बाबा यो रो मन्यरिया ने देपी मार किन तो मुट्रोन्या के पन्या सी ही आई किन आई वान ने वाहे लिया ले वो हर के मुहा लिया ली है के ना मनुआ नी वेताला के रे रे वो मो पोले के कार ममिया नो मिया नो ना कार का के ला वेसाए कोई नि मुख ली हेरे के मुनी वा मो तो लवा नि फाने ने क्वात्रो रा हेशे कुआ नि मनो तो मिलो को मिथानु नि मनो तो मोसा ने उरे ने मिते को साउ सना कोस
1: के का वोवो स्टा कोजिनार होज
2: Mais amor, mais amor,
3: mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Berta, muro uripi o more molelo, e xene era na yemanaka.
5: Papa, non asci xene na micolana, ma iku te no xicola, ma ya uku toca te no kishinta.
4: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kendo ape mapupa machikana frangu weka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa. Atua frangu kana nile duwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onimo kaliharu no karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Bali Bararu Burrasake.
3: Mais vida,
1: o que a vovó está a cozinhar hoje?